जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ।

परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संग जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा साहिब सुख सागर विखे शाम दे दीवाना विच आप संगतां गुरु चरणां दी हाजरी भर के अपने जीवन दे पलां नूं सफला बना रहे हो। आप सब संगतां नूं समूह सेवादारां वल्लों जी आया, आओ प्यार सहित सतगुरां दे पावन चरणां नाल जुड़ करके पावन बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करदे हां। भाई गुरनाम सिंह जी रुद्रपुर वाले अते उन्हां दे रागी जथे पासों सतगुरां दी कृपा दा सदका गुरु घर विखे आप संगतां दे सहयोग दे नाल जो प्रोग्राम उलीके जांदे हन, तिन्हां दे तहत साध संगत जी सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज जीआं दे पावन प्रकाश पुरब नूं मुख रखदिआं होइआं 17 अते 18 अक्तूबर दे शाम दे दीवाना विच विशेष तौर ते बाल राग कीर्तन दरबार सजाया जा रहा है, जिस दे विच साध संगत जी जो वख वख स्कूलां तों जो बच्चियां दीआं टीमां हन वो आप संगतां दे सन्मुख कीर्तन प्रस्तुत करके गुरु रामदास महाराज जी दी कीर्ति नूं गायन करनगे। आप संगतां नूं बेनती है कि वध तों वध संगतां गुरु चरणां विच पहुँच करके आप जीआं ने लाहे प्राप्त करने जी, अते हर साल दी तरह गुरद्वारा साहिब विखे गुरबाणी कंठ मुकाबला जो 24 अक्तूबर नूं हो रहा है, साध संगत जी तिस दे विच अपने बच्चियां दे नाम रजिस्टर करवाओ तां जो बच्चे इस गुरबाणी कंठ मुकाबले विच भाग लै सकन। आप संगतां भी वध तों वध गुरु चरणां विच पहुँच करके सतगुरु जी दीआं बख्शिशां प्राप्त करनियां, तन मन धन दे नाल सेवावां करके गुरु जी दीआं बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। आओ बड़े अदब प्यार सत्कार सहित पावन बाणी दे शब्द कीर्तन दे नाल जुड़दे हाँ। कीर्तन सरवण करा रहे हन भाई गुरनाम सिंह जी रुद्रपुर वाले अते उन्हां दा रागी जथा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जन्म मरण दुख जाई सतनाम वाहिगुरु साहिब जी लख लख बामन चंदना लख अगर मिलंदी

पछाण हो। भिक्षे कमलाव किरण परंगासाए प्रगट कर देखाया। आपे करता सचा सोई आपे मारजी वाले अवर न कोई। नानक नाम मिले वडियाई आप गवाए सुख पाया। मारू सोहला महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सचा आप सवार नहारा अवर न सूजस बीजी कारा। गुरमुख सच वसा घाट अंतर सहजे सच समाई है।

वह एक वस्तु को पहुँच न साके। तन रति फूक प्यासाय, तन कर बिनो दो कर जोरै। प्रयाव प्रदेश न जाओ वसो कर मोरे, ऐसा बन जाओ करो गृह पीतर। जित उतरे फूक प्यासाय, सगले कर्म धर्म जुग सादा। बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा। पई कृपा नानक सत संगे, तौ तन फिर आनंद उलासाए। तन अंधी पेराव चपल सियाना, पंच तत् का रचन रचाना। जिस वखर कौ तुम आए, हो सो पायो सतगुरु पासाए। तन कहे तू वस मैं नल, प्रया सुखवासी बाल गोपाल। तुझे बिना हो कित ही ना लेके, वचन दे छोड़ ना जासाए। फिर कहा हो हुक्मी बंदा, हो भारो ठाकुर जिस कान ना छंदा। जिच राख तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता ऊठ सिधासा है।

जति सति सुख वासी एक दतार सगल है जाचक देह दान सृष्टि जाहे करहै भगत अररंग अपार खिन में थाप ओथा पणहारा पारो तोल बेअंत स्वामी हुकुम मानाउ भगति जाहे जिस देह दरसा सोई तुद जाने ओह गुर के शब्द सदा रंग माने चतर स्वरूप सयाना सोई जो मन तेरे पावी जाहे जिस चीत आवै सो वे प्रवाह जिस चीत आवै सो सचा सहा जिस चीत आवै तिस पाओ केहा अवर कहा किस की जाहे तृष्णा बूझी अंतर ठंडा गुरपुरे लै टूटा गंडा सुरत शब्द हृदय अंतर जागी अम्यों झोल चुल पी जाहे मरे नाही साध साध ही जीवे अमर प्या अबनासी।

सब लोआ सब काले वस आप प्रभु किया निहचल एक आप अविनाशी सो निहचल जो तिसे ध्यान दा हरका सेवक सो हर जेहा भेद ना जानो मानस देहा

देहो दर्श जित मन तृपता सा हर कीर्तन मानव ठहराएंदा रूड़ो ठाकुर आओ किता वस न आवै हर सो किस करे जे हर क्या संता पहवै कीता लोड़न सोई कारायन दरफे न कोई पाएंदा जिथे आओ घट आए बनत है प्राणी तिथे हर त्याये सारंग पाणी जिथे पुत्र आओ कलत्र न बेली कोई तिथे हर आप छुडाएंदा वड्डा साहब अगम अथाहाओ क्यों मिलिए प्रवे प्रवाहाओ काट सिलक जे साव मार्ग पाए सो बेचाओ।

संते संग राखो एहो नाम दान देवायना पै कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुरु पूरे सुख सह सदा आनंदा नानक दास दसायना मारु सोलह महला पंजवा एका ओंकार सतगुरु प्रसाद सिमरै धरती आर आकाशा सिमरै चंद सूज गुण तासा पौन पानी बैसंतर सिमर है सिमरै सगल उपार जना सिमर है खंड दीप सब लोवा सिमर है पाताल पुरिया सच सोवा सिमर है खाणी सिमर है बाणी सिमर है सगले हार जना सिमर है ब्रह्म विष्णु महेसा सिमर है देवते कोड़ ततीसा सिमर है जग दैत सब सिमर अगणत न जाई जस गणा सिमर है पास पंखी सब भूता सिमर है बन पर्वत आतूता लता बलि साक सब सिमरे रब रहा स्वामी सब मना सिमरे थूल सूक्ष्म सब जनता सिमरे सिद्ध साधक हर मंता गुप्ता प्रगटा सिमरे प्रमेर सगल भवन का प्रभ तना सिमरे नारी आश्रमा

ख्यत्रे शब्दं सूर शब्दं सूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं त एक शब्दं जे को जानस पेयो नानक ता को दास है सोई निरंजन देयो एक कृष्णं त सर्व देवा देव देवा त आत्म है आत्मं श्री वासुदेवस्य जे कोई जान सपेव नानकता को दास है सोई निरंजन देव। सलोक सहस कृति महला।

काच कोटं रचांत तोयं लेपनं रक्त चर्मण है नवांत द्वारं पीत रहतं बाय रूपं स्तंभन है गोविंद नामं नह सिमरंत अज्ञानी जानत स्थिरं दुर्लभ देह उदरंत सार सरण नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत तोयं अच्युत गुणज्ञं पूर्णं बहलो कृपाला गंभीरं ऊचय सर्वज्ञ अपारा प्रत्या प्रयं विश्राम चरणंगनाथ नाथे नानक शरणं मृगी पेखांत बद्धेक प्रहारेण लख आवदह अहो जस्य रखेण गोपाल है नानक रोम न छेदयते बहु जतन करता बलवंत कारी सेवंत सूरा चतुर दिस है बिखमथान बसंत उच्च है नह सिमरंत मरण कदांच है होवंत आज्ञा भगवान पुरख है नानक कीटी सास करखते शब्दं रतं हितं मया कीर्तं कली कर्म कृत्वा मिटंत तत्रागत परम मोहं भगवान रमणं सर्वत्र थान्यं दृष्ट तोयं अमोघ दर्शनं बसंत साध रसना हर हर हर हरे नानक प्रियं जाप जपना कटांत रूपं कटांत दीपं कटांत रव सस्यर नक्षत्र गगनं कटांत वसुदा गिर तर सिखंडं कटांत ललना सोत प्रात हितं कटांत कनिक मानिक माया स्वरूपं नह कटांत केवल गोपाल अच्युत अस्थिरं नानक साध जाना नह बिलंब तरमं बिलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत सुलोभं शरण संतं किल विघ्न

जगत माया संबंधन है। दयाल एक भगवान पुरख है, नानक सर्व जीव प्रतिपालक है। अनित्य वित्तं अनित्य चित्तं अनित्य आशा बहुविध प्रकारं अनित्य हेतं अहं बंधं परम माया मलनं विकारं फिरंत जो ननिक जठरागन नह सिमरंत मलिन बुद्ध्यं। हे गोविंद करत मया नानक पतित उदाहरण सार संग महै। गिरंत गिर पतित पातालं जलंत दे दीप स्वंतर है। महंत अगाह तोयं तरंगं दुखांत ग्रह चिंता जन्मं तमरण है। अनेक साधन न सिद्ध्यते नानक असंभं अस्तंभं अस्तंभं शब्द साध स्वजन है। कोर दुख्यं अनेकत्यं जन्म दारिद्र्यं महाविख्यादं मिटांत सगल सिमरंत हर नाम नानक। जैसे पावक काष्ट भस्मं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन है। रिद बसंत पै पीत दूता है, कर्म करत महानिर्मल है। जन्म मरण रहंत स्रोता सुख समूह अमोघ दर्शन है। शरण जोगं संत प्रिय नानक सो भगवान खेमं करोत पाछं करोत अग्रणी वह निरासं आस पूर्ण है।

नानक वस्यं करोत पंच तस्कर है मृग तृष्णा गंधर्व नगरंग द्रुम छाया रोच दुर्मते है ततः कुटुंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नाच विद्या निदान निगमंग नाच गुणज्ञ नाम कीर्तन है नाच राग रतन कंठंग नह चंचल चतुर चातुर है भाग उद्यम लब्ध माया नानक साध संग खाल पंडित है कंठ रमणीय राम राम माला हस ऊच प्रेम तहरणे जीह पाणा जो तम सलोक उदरण नैन नंदने गुरमंत्र हीणस्य जो प्राणे त्रिगंत जन्म प्रश्न है कुकर है सूक्र है गर्द बह काक है सर्प है तौल खल है चरणारविंद भजन हृदयंग नाम तहरण है कीर्तन सार संगेण नानक नह दृष्टांत जम दूतन है नाच दुर्लभंग तनंग रूपंग नाच दुर्लभंग स्वर्ग राजन है नाच दुर्लभंग भोजनंग व्यंजनंग नाच दुर्लभंग स्वच्छ अंबर है नाच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव नाच दुर्लभंग बनिता बिलास है नाच दुर्लभंग विद्या प्रवीणंग नाच दुर्लभंग चतुर चंचल है दुर्लभंग एक भगवान नाम है नानक लभ्यंग साध संग कृपा प्रभंग जात कतह ततह दृष्टं स्वर्ग मर्त्यपयाल लोक है।

तृणं तमेरं सहकं तहरियं बूढ़ं ततरियं ऊणं तपरियं अंधकार कोट सुर उजारं बिनवंत नानक हर गुरदयारं। ब्राह्मण है संग उदरणं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है आत्मरतं संसार गहं ते नर नानक नेह फल है। परम दर पर दर्भ हिरणं भव विघ्न करणं उच्चरणं सर्व जीय कह।

ओठ तावते से जान मारे भगवंत। कबीर जंदन का बिरवा पला बेड़े उटाक पला, सो ओए भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास।

दीन गवाया दुनी स्यो दुनी न चाली साथ पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ कबीर जय जय हो फिरयो कौतक ठाओ ठाए एक राम स्नेही बाहरा उजर मेरे पहाए कबीर संत।

कबीर निगसाए बह गए थांगी नाही कोए, दीन गरीबी अपनी करते हुए सो होए। कबीर बैसरों की कुकर भले साकत की बुरी माए, ओह नित सुनहर नाम जास ओह पाप साहन जाए।

हीर हर हीरा जन जौहरे लेकै मड हाट जभी पाय है पारखु तब हीरन की साट कबीर काम परे हर सिमरिया ऐसा।